छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी बातें, वो मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी मीठी यादें,